नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय

भक्ति के बिना कीर्तन का क्या अर्थ है? भावनाओं के बिना प्रार्थना का क्या अर्थ है? वात्सल्य के बिना ममता का क्या अर्थ है? स्वामी के प्रेम के बिना हमारे जीवन का क्या अर्थ है? भगवान के प्रेम में जो रस है, जो मधुरता है, जो नूतनता है, वो संसार के किसी प्रेम में नहीं है। ये स्वामी का प्रेम ही तो है जो हजारों दिलों को एक डोर में बांध कर रखी है। स्वामी का प्रेम समय और स्थान के सीमा से परे है। इस प्रेम के आलिंगन में ही हमारे जीवन का सार्थकता है। प्रकृति पुरुष का प्रतिबिंब है। अगर हम गौर से देखें तो ये जानेंगे कि प्रकृति का हर अंश, चाहे वो नदी हो या वृक्ष हो, धूप हो या छांव हो, आग हो या पानी हो, उन सभी का स्वभाव परोपकार है। ये केवल देना जानते हैं, लेना नहीं। शायद इसीलिए अवतार पुरुष हमारे भगवान ने कहा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। आइए सुनते हैं भगवान का जीवन रहस्य, जो छिपा है प्रकृति के संदेश में, जो छिपा है मधुवन के खुशबू में।